मंडळी उठा उठा सकाळ झाली आणि आज खास स्पेशल डे सेलिब्रेट करण्याची वेळ आलेली आहे. यु आर लिस्निंग MGM 90.8 FM आणि गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर. RJ अदनान तुमच्या सोबत आहे आणि घड्याळात एक्झॅक्टली 7:12 ही वेळ झालेली आहे. तर एकदम मस्त फर्स्ट क्लास तुम्ही असालाच. आय होप की असंच तुमचं मूड दिवसभर आज असावं. बिकॉज आज क्या आहे पता आहे, आज वो दिन आहे जिसकी वजह से हम सभी का दिन होता है. अगर उसका दीदार हमें सुबह सुबह ना हो, उसे हमने अगर लबों से सुबह सुबह ना लगाया हो तो दिन अधूरा अधूरा सा लगता है. जी हाँ, मैं सच्चे कह रहा हूँ, उसके बिना तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती. भाई जब वो आकर सुबह सुबह हमारे लबों को छूती है तो भाई जन्नत सा फील होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी वैसी कुछ बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ चाय की. और आज हम बस चाय पर बात करने वाले हैं. आज है इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाह दिवस. सो चाय की बात तो आज अपने शो में तो होने ही वाली है, लेकिन बात होने से पहले चाय की चुस्की मैं लेकर आता हूँ. आप भी आज की मॉर्निंग एकदम गुड कीजिएगा कड़क अदरक वाली चाय की चुस्की के साथ. आप बहाने मत बनाइएगा कि यार बहुत गर्मी है, चाय कैसे पिए. जो सच्चे चाय लवर होते हैं ना, तो उनके लिए चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, बस चाय चाय और चाय चाहिए ही होती है. आता हूँ कुछ ही देर में बहुत सारी बातें करने अबाउट चाय के साथ. चहाला वेळ नाही पण वेळेला चहा पाहिजे या गाण्यासोबत आजची मॉर्निंग गुड करूया. इन द शो ऑल इज वेल विथ RJ अदनान.

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। मंडे है आज और आज एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी जो आपका पूरा वीक सेट कर देगी। ये कहानी है दशरथ मांझी की। बिहार का एक आम आदमी, ना पैसा ना पावर, बस एक जुनून। उनकी वाइफ की एक दिन तबीयत खराब होती है, लेकिन अस्पताल पहुंचने के लिए उन्हें पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है और टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। सोचो एक आदमी के लिए यह कितना बड़ा झटका होगा। लेकिन दशरथ मांझी ने हार नहीं मानी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब कोई और इस वजह से नहीं मरेगा। और दोस्तों बिना किसी मशीन के सिर्फ एक हथौड़ा और छीनी लेकर उन्होंने अकेले ही पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन नहीं, 11 महीने नहीं, 22 साल तक रोज मेहनत करते रहे। उन्होंने तकरीबन 110 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। जहां पहले 55 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वहां सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया। सोचो एक इंसान का डिटर्मिनेशन क्या कर सकता है। अगर आपको लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा है, तो याद रखना प्रॉब्लम से बड़ा आपका क्यों होना चाहिए, यानी कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ये सवाल आपके माइंड में होना चाहिए। पहाड़ तोड़ने के लिए फोर्स नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे कि दशरथ जी ने हमें बताया। यही कंसिस्टेंसी आप भी आपकी जिंदगी में फॉलो कीजिएगा और बड़ी से बड़ी मुश्किलें वो भी आसान हो जाएगी। और ये थी आज की मंडे मोटिवेशन।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति।

0: मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो जिंदगी ऑल इज वेल हो ही जाएगी। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM और मेंटल हेल्थ वेल करने के लिए अपने साथ थे डॉक्टर मानसी करोसगांवकर मैम, जिनके साथ हम इस बार बात कर रहे हैं अबाउट वर्क कल्चर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हम जिस जगह पर काम करते हैं वहां पर अक्सर हमें ये महसूस होता है। अगर मैम स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी हो जाता है क्या?
1: देखिए, अगर स्ट्रेस हमको बहुत हमारी जो है डेली लाइफ को अगर अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, कि जैसे ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है, या बहुत थकान महसूस हो रही है, या हमारा मूड बहुत खराब लग रहा है, बहुत लो मूड फील हो रहा है, जैसे बहुत रोना आ रहा है और जैसे हमारी सांसें फूल रही है डर के मारे कि अगर ऑफिस जाना है, इतना बड़ा काम दिख रहा है, पता नहीं बॉस डांट लगाएगा या प्यार से बात करेगा या जो भी है, अगर ये हद से ज्यादा होने लगे, और फिर कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको तुरंत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास तुरंत आपको जाना चाहिए, जब आपको लगे कि ये सब चीजों के कारण से आपकी डेली लाइफ अफेक्ट कर रही है नेगेटिवली, तो जरूर आपको हेल्प लेनी चाहिए।
0: तो अगर स्ट्रेस आपको बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहा है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, यानी कि किसी डॉक्टर को वगैरह बता सकते हो, जिससे आपका स्ट्रेस मेंटेन रहे। सो ये बात याद रखिएगा, अपनी हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को वेल रखिएगा। बाकी सुनते रहिए।

हम बात कर रहे हैं आज चाय की, और फरमाइश भी चाय वाली आई है अपने पास गानों की। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान, बस आपके खिदमत में हाजिर होता है। और आज इंटरनेशनल टी दिवस, इसी के साथ आज मेरे पास अभी एक मैसेज आया है रेनू काली जी की तरफ से, चाय का दिन है तो मेरे लिए गाना प्ले करना, वो गाना वो किसी को डेडिकेट करना चाहते है, और वो गाना ये है।

ओहो, शायद से शादी का ख्याल आया है इसलिए चाय पर भी बुलाया है। चलिए फिर अब रेनू जी की फरमाइश पर ये बेहतरीन सा गाना आज हम एंजॉय करते हैं और इंटरनेशनल टी डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो चाय वाला गाना तो बनता है और ये गाने के बिना कोई भी शादी अधूरी हो ही जाती है क्योंकि जब हम किसी को देखने जाते हैं, कोई हमें देखने आता है तो ऑफर क्या करते हैं, हम चाय ही करते हैं। 1983 में फिल्म आई थी सौतन नाम था फिल्म का, जिसमें राजेश खन्ना और टीना जी थे और इस गाने को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: आजच भेट द्या.
1: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, आंतर रुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट 8888992688.
2: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
1: तो एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.

आपके दिमाग में ये होगा कि मैं ऑफिस जाने से पहले पेट्रोल भर दूंगा और फिर ऑफिस चला जाऊंगा, वक्त पर पहुंचूंगा। तो भाई ये बहुत गलत सोच रहे हो आप। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और सिटी अपडेट में अपडेट यही है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो भाई थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि पेट्रोल पंप पर जाने के बाद आपको आधा घंटा तो लगने ही वाला है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी कतारें हैं पेट्रोल की और पंप बहुत सारे ड्राई हो चुके हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ना एक ही दिन में अपने शहर में कल 3 दिन का पेट्रोल खत्म हो गया है। हर दिन पेट्रोल लगता है 6,48,000 लीटर, तो डीजल लगता है 11,48,000 लीटर। और बात कुछ ऐसी है कि लोगों के दिमाग में सवाल उठे है कि यार आने वाले वक्त में पेट्रोल तो नहीं मिलेगा, तो लोग एक्स्ट्रा पेट्रोल अपने गाड़ियों में भर रहे, इस वजह से एक दिन में 3 दिन का पेट्रोल खत्म हो गया है। तो होगा ही ना भाई, इतने सारा एक्स्ट्रा पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भर रहे, जहां पर लोग 100 रुपए का पेट्रोल भरते थे वो लोग 200 और 300 रुपए का पेट्रोल भर रहे है। 4 दिन में 2 बार पेट्रोल के प्राइस भी इंक्रीज हो गए है, यानी कि बढ़ गए। तो आम आदमी क्या करेगा, सोचेगा ना यार आने वाले वक्त में और भी प्राइस बढ़ सकते, उससे बेटर है मैं आज ही टंकी फुल कर दूं पुराने प्राइस के अंदर। तो कुछ इस तरीके से पेट्रोल और डीजल का शॉर्टेज नजर आ रहा है, और शहर के बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप है जो कि दोपहर तक ही पूरे ड्राई हो रहे हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैनिक मत हो जाइएगा और अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा जो व्हाट्सएप पर आते हैं कि यार शहर में पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, हम कैसे जिए। तो इस वजह से लोग परेशान होकर एक्स्ट्रा पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भर रहे हैं, चाहिए उतना पेट्रोल सभी को मिल नहीं रहा। तो अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, सबको पेट्रोल की जरूरत है, तो इस हिसाब से अपने अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरिए। और हाँ, ये बढ़ते दामों का मैं क्या ही बोलूं, महंगाई बढ़ती है, आम आदमी का जेब खाली होता है, बस चलता है, चलने दो बल्कि चल ही रहा है। स्टे ट्यून्ड।

0: एक वक्त था यार जब अपने छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट से 19 प्लेन टेक ऑफ लेते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और आज की बात करें तो बस सिर्फ 9 एरोप्लेन आते हैं और जाते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई अगर आपको गोवा या हैदराबाद जाना है और आप सोच रहे होंगे कि हम अपने शहर से डायरेक्ट गोवा और हैदराबाद जा सकते हैं वाया प्लेन के जरिए, तो भाई साहब और बहन जी, गोवा और हैदराबाद की जो एरोप्लेन है वो फिलहाल कैंसल कर दिए गए हैं। जी हाँ, इंडिगो के जो ये एरोप्लेन थे, इन्होंने डिसाइड किया है कि 30 सितंबर तक पूरी तरीके से ये प्लेन कैंसल रहेगी। रीजन यही है कि यार उनके पास फ्यूल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो शॉर्टेज चल रहा है पूरे दुनिया भर में फ्यूल का, तो उसी वजह से जो फ्यूल लगता है और ये अलग फ्यूल होता है जो कि एरोप्लेन में यूज किया जाता है, वो फ्यूल अवेलेबल नहीं है। इन्होंने गोवा और हैदराबाद के जो प्लेन से वो पूरे कैंसिल कर दिए गए 30 सितंबर तक। तो आपको ट्रेन के जरिए या फिर बाय रोड आपको जाना पड़ेगा, बाय एयर तो ये पॉसिबल नहीं है। कनेक्टिंग फ्लाइट्स आपको मिलेगी, वो भी डायरेक्ट यहाँ से मुंबई और पुणे से मिल सकती है आपको गोवा के लिए। और हैदराबाद जाना है तो आपको फ्लाइट नांदेड़ से भी मिल सकती है। तो आने वाले वक्त में भाई और क्या कुछ चेंजेस हो गए ये बता नहीं सकते। सो ये इम्पोर्टेंट अपडेट था, याद रखिए, स्टे ट्यून्ड।
1: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 937171 4253 or visit MGM Campus N6 Sirco, Chhatrapati, संभाजीनगर।

कभी नोटिस किया है, लाइफ कितनी भी फास्ट हो जाए, सुकून का शॉर्टकट आज भी एक कप चाय हो जाए, बस यही होता है। आरजे अदनान को आप सुन रहे हो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। सुबह ऑफिस की टेंशन, कॉलेज असाइनमेंट, रिलेशनशिप का कंफ्यूजन या घर वालों का बेटा फ्यूचर का क्या सोचा है ये वाला अटैक, सबके बीच अगर कोई असली थेरेपी है तो वो है चाय। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, चाय कभी अकेली नहीं होती, उसके साथ मेमोरीज फ्री मिलती है। हॉस्टल की वो कटिंग चाय, बारिश में टपरी के बाहर खड़े होकर चाय, एक कड़क अदरक वाली चाय देना और दोस्तों के साथ वो डायलॉग, भाई टेंशन मत ले चाय पीते है ना, और हाँ चाहे गर्मी हो या धूप हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, एक कप चाय हो जाए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सच बोलू कभी कभी ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस चाय के साथ थोड़ी हल्की लगने लगती है, एक अजीब सा मैजिक होता है चाय में। गर्म कप हाथ में आते ही लगता है चलो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है यार, और वो पहला सिप जैसे दिमाग को रिस्टार्ट वाला बटन मिल गया हो। इसीलिए शायद इंडिया में जब भी कोई मिलता है ना चाय पिएगे ये सबसे ज्यादा कहा जाता है। तो अगर आज लाइफ थोड़ी हेवी लग रही है, फोन साइड में रखो, अपनी फेवरेट चाय बनाओ, बालकनी में जाओ और दो मिनट बस खुद के साथ बिताओ, क्योंकि आज है इंटरनेशनल टी डे, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। सुकून किसी एक्सपेंसिव वेकेशन में नहीं, एक सिंपल सी चाय में मिलता है, तो यही चाय का स्वाद आज के दिन एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। और भी बहुत सारी बातें करते हैं अबाउट चाय से रिलेटेड और चाय की कहानी जानते हैं, आपकी भी कुछ कहानी किससे जानते हैं, तो आपकी भी कुछ प्यारी सी हसीन यादें होगी चाय के साथ, कुछ मेमोरेबल पल होंगे चाय के साथ आपने गुजारे हुए, कुछ ऐसी बातें जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगी चाय के साथ आपने वो फील की थी, तो कॉल करके जरूर बताइए। कॉल कीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, बिंदास कॉल कीजिए, मैं आपके कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।

0: में ना तो कहां पर भी कोई भी मिल जाए ना तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं पता है क्या, हाय हेलो होता है, उसके बाद कहते हैं कि चलो भाई चाय पीते हैं। मेरा तो एक अपनापन है, एक दोस्ती यारी है। आज हम चाय की बात कर रहे हैं क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। वैसे मैंने आपसे पूछा था कि यार चाय के साथ आपकी भी कुछ यादगार हसीन यादें होगी तो मेरे साथ शेयर करें, तो देखते हैं अभी अपने साथ कॉल पर कौन है। हेलो, आपका नाम?
1: माय नेम इज वाजिद अहमद खान।
0: हेलो वाजिद भाई, तो आपकी क्या कुछ चाय के साथ यादें हैं?
1: चाय से रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहूंगा, मेरा एक मित्र है महादेव, और फर्स्ट टाइम जब हम किसी ऑफिस पर्पस पे मिले थे, उनका चाय का कप आधा होने के बाद में मैंने वही कप से वो चाय मैंने पी लिया, तो उनको एक अजीब सा लगा कि सर आपने ये मेरा झूठा चाय कैसा पिया। तो मैंने उनको ये बताया कि चाय ये मैसेज देती है मोहब्बत की, तो वो किसी धर्म को देख के मोहब्बत नहीं होती है, और चाय वो माध्यम है जो एक दूसरे को जुड़ाती है, अच्छे अच्छे कामों को एक एक टेबल पे वो एक अच्छा फ्रूटफुल मैनर पे लेकर जाती है।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही सही बात कही यार सर ने। तो यार देखो यार, चाय का कप भी ऐसे कभी झूठा नहीं होता है। वैसे यार मैं भी ना तो जब दोस्तों के साथ होता हूँ तो यार हम दोस्त ना तो झूठी चाय अक्सर शेयर करते हैं, क्योंकि चाय का कप कभी झूठा नहीं होता, और झूठी चाय पीने से तो मोहब्बत बढ़ती है मेरी जान। तो यार चाय के साथ आपकी भी कुछ ऐसी बातें होगी तो जरा कॉल करके मुझे जरूर बताइएगा। कॉल करें 9359320080 पर।

0: के साथ।
1: आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। वैसे चाय की बात हो रही है तो एक बात याद रखना लाजमी है कि अपने इंडिया में मिला तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म की अलग अलग टेस्ट की चाय मिलती है। जैसे कि दार्जिलिंग चाय जो कि पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है, इसमें फूल होते हैं और हल्का सा इनका स्वाद भी होता है। इस्साम चाय एकदम डार्क रंग की चाय होती है जो कि आजकल अपने घर पर भी मिलती है। नीलगिरी चाय मैंने टेस्ट की थी जब मैं तमिलनाडु घूमने गया था और तमिलनाडु में मिलती है नीलगिरी से बनी हुई है चाय। इसी के साथ मसाला चाय तो जो हर एक घर में बनती है और मसाला चाय में मसालेदार चीज़ें होती है, दालचीनी, इलायची, अदरक, पुदीना और सर दर्द के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चाय है। सुलेमानी चाय ये केरल में मिलती है, एकदम काले कलर की चाय होती है जिसमें नींबू और हल्की सी चीनी मिलाई जाती है। और कड़क चाय तो आजकल हम सभी को चाहिए जो कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। इसी के साथ कश्मीरी चाय जो कि कश्मीरी कहवा ऐसा भी इसे कहा जाता है, जिसमें ग्रीन टी बेस, बादाम, केसर ये सब चीज़ें मिलाई होती है। और हैदराबाद और पुणे में एक ऐसी चाय मिलती है जो कि बनमस्का के साथ खाने में मज़ा आता है, उसे कहते हैं ईरानी चाय। पुणे में ईरानी चाय के साथ बनमस्का जरूर खाइएगा और हैदराबाद में ना तो चार मीनार के सामने चाय अवेलेबल है, तो वहां पर कभी जाना हुआ जरूर पीजिए। गुजरात में फेमस है लील चाय और एक होती है तंदूरी चाय जो कि तंदूर के अंदर बनाई जाती है। देन आती है बटर चाय और गोंगुरा चाय, इसी के साथ अश्वगंधा चाय, तुलसी चाय, ये सभी चाय के अलग अलग टाइप्स है जो कि अपने पूरे इंडिया में मिलते हैं और हर एक स्टेट की हर एक जगह की चाय की टेस्ट और चाय की खुशबू अलग होती है और इसका स्वाद भी अलग होता है। तो कभी इन जगहों पर जाना हुआ तो चाय जरूर टेस्ट कीजिएगा और आपकी कौन सी फेवरेट चाय है मुझे जरूर बताइएगा। डीएम कीजिए इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: on MGM 90.8 FM.
1: किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है आरजे अदनान। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप झिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। All is well. RJ Adnan ka morning show. Freshness light radio ka flow. On MGM 90.8 FM.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: परफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एफएम 90.8।

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515.
2: चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट RJ और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर. कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर. तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM. साथ है तो बात है.

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है NGM 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात है।
2: What's your problem, dude?
3: Batata.
2: What the?

अपना आवाज आपके अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM,
2: साथ है तो बात है।

लता जी लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं, लता जी तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इन को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजे मनीषा। तो चलिए इस खूबसूरत सी शाम की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। सबसे पहले आप सभी को दिल से एक हैप्पी वाला गुड इवनिंग। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गया होगा। अगर दिन थोड़ा व्यस्त था, थकाने वाला भी रहा हो, तो अब बस रिलैक्स हो जाइए क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके लिए है। शाम का समय वैसे भी बड़ा खास होता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब ठंडी हवा चलती है, चाय की खुशबू आती है और अपने मन पसंदीदा गाने सुनने को मिल जाए तो मूड अपने आप ही अच्छा हो जाता है। दोस्तों, जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां बहुत मायने रखती है। कभी परिवार के साथ बैठकर बातें करना, कभी दोस्तों की मस्ती या फिर अकेले में अपनी पसंद का गाना सुनना, यही पल हमें अंदर से खुश रखते हैं। तो आज की इस शाम पर एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, छोटी बातों पर मुस्कुराएंगे और हर दिन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर इस वक्त आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या बस आराम से बैठे हैं तो हमारी तरफ से आपके लिए ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स। सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा शो और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत शाम में एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। कभी भी खुद को कम मत समझिए, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अक्सर हम अपनी जिंदगी में दूसरों को देखकर सोचने लगते हैं कि शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं। किसी का करियर बेहतर लगता है, किसी की लाइफ ज़्यादा परफेक्ट दिखती है और धीरे धीरे हम खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन सच क्या है जानते हैं? हर इंसान अपने तरीके से खास होता है, हर किसी का समय अलग होता है, उसकी कहानी अलग होती है और उसकी मंजिल भी अलग होती है। अगर आज चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर है। हो सकता है जिंदगी आपको थोड़ा और मजबूत बना रही हो, थोड़ा तैयार कर रही हो। एक छोटा सा बीज भी तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे समय लगता है, मेहनत लगती है और भरोसा चाहिए होता है। बस वैसे ही खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। तो आज से खुद को दूसरे से कंपेयर मत कीजिए और खुद को समझना, खुद को बेहतर बनाना थोड़ा ज्यादा शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता आपका खुद के साथ होता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो दुनिया भी एक दिन आप पर विश्वास जरूर करेगी। सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजी मनीषा। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड थोड़ा ऑफ हो, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हो और फिर अचानक आप बाइक लेकर निकल गए हो? सच बताओ, बाइक राइडिंग सिर्फ सफर नहीं होता, कई बार ये हमारे मूड की सबसे अच्छी थेरेपी बन जाती है। जब ठंडी हवा चेहरे से टकराती है, सड़कें आगे बढ़ती जाती है और कानों में मन पसंदीदा गाने बज रहे हो, तो मन का तनाव धीरे धीरे खुद ब खुद कम होने लगता है। बाइक राइडिंग हमें कुछ देर के लिए रोज की भागदौड़ से दूर ले जाती है। ना ज्यादा सोच, ना कोई टेंशन, बस आप, आपकी बाइक और खुली सड़क। और जरूरी नहीं कि हमेशा लंबी ट्रिप ही हो, कभी कभी शाम की छोटी सी राइड भी पूरा मूड फ्रेश कर देती है। एक कप चाय, हल्की हवा और मन पसंदीदा रास्ता, बस इतना काफी होता है चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। लेकिन दोस्तों, राइडिंग का असली मजा तभी है जब सुरक्षा साथ हो। हेलमेट जरूर पहनिए, आराम से चलाइए और ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर कभी जिंदगी थोड़ी भारी लगे, थोड़ा वक्त खुद को दीजिए, बाइक उठाइए और निकल पड़िए एक छोटी सी राइड पर। स्टेडियम टाइम जिम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की कोचो कैसा बंगाली है तू, इतना फिश खाता है फिर भी अकुल नहीं है।
1: तो क्या करूं?
0: जूता खोल के धक्का मारो, नहीं तो जीवन भर फिसलता।

0: सुन रहे हैं आपका मन पसंदीदा रेडियो शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही सबसे ज्यादा जरूरत हो जाती है आपके शरीर को ठंडा और हेल्दी रखने की। और ऐसे मौसम में अगर बात हो देसी तरीकों की तो मटके का पानी याद आया मुझे और वो बिल्कुल सही तरीका है। आजकल फ्रिज का ठंडा पानी हर घर में आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो सुकून और फायदा मटके के पानी में है वो बात अलग ही है। मटके का पानी ना ज्यादा ठंडा होता है और ना ही हमारे शरीर को अचानक ठंड पहुंचाता है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए ज्यादा नेचुरल और हेल्दी माना जाता है। गर्मी में कई बार बहुत ठंडा पानी पीने से गला खराब हो जाता है या शरीर सुस्त महसूस करता है, लेकिन मटके का पानी शरीर को धीरे धीरे ठंडक देता है और लंबे समय तक फ्रेश महसूस कराता है। और दोस्तों, मटके की मिट्टी की खुशबू, इसका स्वाद, सच कहे तो बचपन की यादें भी साथ ले आता है। वो घर का आंगन, वो गर्मी की छुट्टियां और मटके से निकला ठंडा पानी, एक अलग ही एहसास होता है। कभी कभी हमारी पुरानी आदतें सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है और मटके का पानी उन्हीं छोटी लेकिन हेल्दी आदतों में से एक है। तो इस गर्मी खुद को हाइड्रेट रखिए, सेहत का ध्यान रखिए और अगर मौका मिले तो फ्रिज से थोड़ा ब्रेक लेकर मटके का पानी जरूर पीजिए। अभी इस ठंडी और प्यारी सी बात के साथ सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन एमजी मनाली पॉइंट एफएम। साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईओटी साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस एन6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।

वक्त है एक ऐसे गाने का जो सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास है, एक ऐसा एहसास जिसमें प्यार है, साथ है और किसी अपने को कभी ना छोड़ने का वादा है। दिस इज आर जी मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके साथ बातें छोटी हो या बड़ी, सफर आसान लगने लगता है, जिसके होने से मुश्किल रास्ते भी अच्छे लगते हैं, और जब दिल किसी से सच में जुड़ जाता है तो फिर बस यही एहसास रहता है कि जो भी हो जाए तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। आजकल की तेज जिंदगी में रिश्तों को समय देना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहाँ लोग सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी हमसफर बनकर और कभी सिर्फ एक ऐसी आवाज बनकर जो कहे मैं हूँ ना। तो अगर इस वक्त आपके दिल में कोई ऐसा खास इंसान है, कोई ऐसा जिसे आप बहुत मिस कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहा, तो ये गाना उसके नाम है। प्यार, भरोसा और साथ के इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनिए कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

है आपका फेवरेट शो और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि शरीर को हेल्दी और हाइड्रेट रखना भी बहुत जरूरी होता है। आजकल लोग फिट और हेल्दी रहने के लिए कई तरीके की चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन कई बार हम आसान और घरेलू चीज़ें ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। जैसे पानी में ककड़ी, पुदीना, गाजर और चिया सीड्स डालकर पीना, सुनने में सिंपल लगता है लेकिन ये छोटी सी ड्रिंक शरीर को काफ़ी फ्रेश और एक्टिव महसूस करवा सकती है। ककड़ी शरीर को ठंडक देती है और पानी की कमी नहीं होने देती। पुदीना ताजगी लाता है और गर्मी में बहुत अच्छा महसूस करवाता है। गाजर में अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, और चिया सीड्स ये छोटी सी चीज़ एनर्जी और हेल्दी फील देने में बड़ी मदद करती है। बस एक बोतल पानी ये सारी चीज़ें डालकर लीजिए, थोड़ी देर रहने दीजिए और फिर पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। ना सिर्फ शरीर अच्छा महसूस करेगा बल्कि गर्मी में फ्रेशनेस भी बनी रहेगी। सो यार, हेल्दी रहने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, कई बार छोटी अच्छी आदतें भी बड़ा फ़र्क ला देती है। तो इस गर्मी खुद का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए और अपनी हेल्थ को थोड़ा नेचुरल तरीके से सपोर्ट कीजिए। स्टे ट्यून्ड, एमजी 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि शरीर में एनर्जी बने रहे और हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन कई बार काम की जल्दी में हम सही खाना खाना भूल जाते हैं। ऐसे में एक छोटी सी हेल्दी चीज बहुत काम आ सकती है और वो है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि शरीर के लिए भी काफी फायदेमंद माने जाते हैं। बादाम, काजू, अखरोट, खजूर और दूसरे ड्राई फ्रूट्स से बने ये लड्डू शरीर के लिए नेचुरल एनर्जी देते हैं। और अगर सुबह जल्दी निकलना हो, ऑफिस का काम हो, बच्चों की पढ़ाई हो या दिन भर की थकान, ऐसे समय में एक छोटा सा ड्राई फ्रूट्स का लड्डू भी शरीर को अच्छा महसूस करवा सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें घर का स्वाद और प्यार दोनों होता है। कई लोगों को बचपन की यादें भी आ जाती है जब घर में माँ या दादी अपने हाथों से ये हेल्दी लड्डू बनाया करती थी। दोस्तों, हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ डाइटिंग नहीं होता, सही चीजें सही मात्रा में खाना भी उतना ही जरूरी होता है। तो अगर आप भी दिन भर एक्टिव और फिट रहना चाहते हैं तो कभी कभी अपनी डेली लाइफ में ड्राई फ्रूट्स लड्डू जैसी हेल्दी चीजों को जरूर शामिल कीजिए। और हाँ, स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजी 90.8 FM। लेकिन जाने से पहले दिल से बस इतना कहना चाहेंगे कि आज की ये शाम आपके साथ विदा कर सच में बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारी बातें, हमारे गाने और छोटी छोटी मुस्कानें आपके दिन को थोड़ा और खूबसूरत बना पाई होगी। जिंदगी में हर दिन नया होता है, नई उम्मीदें लेकर आता है, नए मौके लेकर आता है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, अपने लोगों के साथ समय बिताइए और खुद का ख्याल रखिए। अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो तो याद रखिए, हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बस मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका प्यार, आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी तरह हमेशा हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए और अपनी जिंदगी पॉजिटिव बनाते रहिए। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलेंगे एक नई शाम, एक नई बातों के साथ और कुछ नए शानदार गानों के साथ। Only on MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

तो हम बात कर रहे हैं आज चाय की, और फरमाइश भी चाय वाली आई है अपने पास गानों की। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान, बस आपके खिदमत में हाजिर होता है। और आज है इंटरनेशनल टी दिवस। इसी के साथ आज मेरे पास अभी एक मैसेज आया है रेनू काली जी की तरफ से, चाय का दिन है तो मेरे लिए गाना प्ले करना, वो गाना वो किसी को डेडिकेट करना चाहते है, और वो गाना ये है।

ओहो शायद से शादी का ख्याल आया है इसलिए चाय पर भी बुलाया है। चलिए फिर अब रेनु जी की फरमाइश पर ये बेहतरीन सा गाना आज हम एंजॉय करते हैं और इंटरनेशनल टी डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो चाय वाला गाना तो बनता है और ये गाने के बिना कोई भी शादी अधूरी हो ही जाती है क्योंकि जब हम किसी को देखने जाते हैं कोई हमें देखने आता है तो ऑफर क्या करते हैं हम चाय ही करते हैं। 1983 में फिल्म आई थी सौतन नाम था फिल्म का जिसमें राजेश खन्ना और टीना जी थे और इस गाने को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

कभी नोटिस किया है, लाइफ कितनी भी फास्ट हो जाए, सुकून का शॉर्टकट आज भी एक कप चाय हो जाए, बस यही होता है। आरजे अदनान को आप सुन रहे हो ऑन एमजीएम 90.8 FM। सुबह ऑफिस की टेंशन, कॉलेज असाइनमेंट, रिलेशनशिप का कंफ्यूजन, या घर वालों का बेटा फ्यूचर का क्या सोचा है ये वाला अटैक, सबके बीच अगर कोई असली थेरेपी है तो वो है चाय। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, चाय कभी अकेली नहीं होती, उसके साथ मेमोरीज फ्री मिलती है। हॉस्टल की वो कटिंग चाय, बारिश में टपरी के बाहर खड़े होकर चाय, एक कड़क अदरक वाली चाय देना और दोस्तों के साथ वो डायलॉग, भाई टेंशन मत ले चाय पीते है ना, और हाँ चाहे गर्मी हो या धूप हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, एक कप चाय हो जाए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सच बोलो कभी कभी ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस चाय के साथ थोड़ी हल्की लगने लगती है, एक अजीब सा मैजिक होता है चाय में। गर्म कप हाथ में आते ही लगता है चलो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है यार, और वो पहला सिप जैसे दिमाग को रिस्टार्ट वाला बटन मिल गया हो। इसीलिए शायद इंडिया में जब भी कोई मिलता है ना चाय पिएगे ये सबसे ज्यादा कहा जाता है। तो अगर आज लाइफ थोड़ी हेवी लग रही है, फोन साइड में रखो, अपनी फेवरेट चाय बनाओ, बालकनी में जाओ और दो मिनट बस खुद के साथ बिताओ, क्योंकि आज है इंटरनेशनल टी डे, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। सुकून किसी एक्सपेंसिव वेकेशन में नहीं, एक सिंपल सी चाय में मिलता है, तो यही चाय का स्वाद आज के दिन एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। और भी बहुत सारी बातें करते हैं अबाउट चाय से रिलेटेड और चाय की कहानी जानते हैं, आपकी भी कुछ कहानी किससे जानते हैं, तो आपकी भी कुछ प्यारी सी हसीन यादें होगी चाय के साथ, कुछ मेमोरेबल पल होंगे चाय के साथ आपने गुजारे हुए, कुछ ऐसी बातें जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगी चाय के साथ आपने वो फील की थी, तो कॉल करके जरूर बताइए। कॉल कीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, बिंदास कॉल कीजिए, मैं आपके कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और सुनते रहिए।

0: इंडिया में ना तो कहां पर भी कोई भी मिल जाए ना तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं पता है क्या, हाय हेलो होता है, उसके बाद कहते हैं कि चलो भाई चाय पीते हैं। मेरा तो एक अपनापन है, एक दोस्ती यारी है। आज हम चाय की बात कर रहे हैं क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। वैसे मैंने आपसे पूछा था कि यार चाय के साथ आपकी भी कुछ यादगार हसीन यादें होगी तो मेरे साथ शेयर करें, तो देखते अभी अपने साथ कॉल पर कौन है। हेलो, आपका नाम?
1: माय नेम इज वाजिद अहमद खान।
0: हेलो वाजिद भाई, तो आपके क्या कुछ चाय के साथ यादें हैं?
1: चाय से रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहूंगा। मेरा एक मित्र है महादेव, और फर्स्ट टाइम जब हम किसी ऑफिस पर्पस पे मिले थे, उनका चाय का कप आधा होने के बाद में मैंने वही कप से वो चाय मैंने पी लिया, तो उनको एक अजीब सा लगा कि सर आपने ये मेरा झूठा चाय कैसा पिया। तो मैंने उनको ये बताया कि चाय ये मैसेज देती है मोहब्बत की, तो वो किसी धर्म को देख के मोहब्बत नहीं होती है, और चाय वो माध्यम है जो एक दूसरे को जुड़ाती है, अच्छे अच्छे कामों को एक एक टेबल पे वो एक अच्छा फ्रूटफुल मैनर पे लेकर जाती है।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही सही बात कही यार सर ने। तो यार देखो यार, चाय का कप भी ऐसे कभी झूठा नहीं होता है। वैसे यार मैं भी ना तो जब दोस्तों के साथ होता हूँ तो यार हम दोस्त ना तो झूठी चाय अक्सर शेयर करते हैं, क्योंकि चाय का कप कभी झूठा नहीं होता, और झूठी चाय पीने से तो मोहब्बत बढ़ती है मेरी जान। तो यार चाय के साथ आपकी भी कुछ ऐसी बातें होगी तो जरा कॉल करके मुझे जरूर बताइएगा। कॉल करें 9359 3200 पर।

आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। वैसे चाय की बात हो रही है तो एक बात याद रखना लाजमी है कि अपने इंडिया में मिला तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म की अलग अलग टेस्ट की चाय मिलती है। जैसे कि दार्जिलिंग चाय जो कि पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है, इसमें फूल होते हैं और हल्का सा इनका स्वाद भी होता है। इस्साम चाय एकदम डार्क रंग की चाय होती है जो कि आजकल अपने घर पर भी मिलती है। नीलगिरी चाय मैंने टेस्ट की थी जब मैं तमिलनाडु घूमने गया था और तमिलनाडु में मिलती है नीलगिरी से बनी हुई है चाय। इसी के साथ मसाला चाय तो जो हर एक घर में बनती है और मसाला चाय में मसालेदार चीज़ें होती है, दालचीनी, इलायची, अदरक, पुदीना और सर दर्द के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चाय है। सुलेमानी चाय ये केरल में मिलती है, एकदम काले कलर की चाय होती है जिसमें नींबू और हल्की सी चीनी मिलाई जाती है। और कड़क चाय तो आजकल हम सभी को चाहिए जो कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। इसी के साथ कश्मीरी चाय जो कि कश्मीरी कहवा ऐसा भी इसे कहा जाता है जिसमें ग्रीन टी बेस, बादाम, केसर ये सब चीजें मिलाई होती है। और हैदराबाद और पुणे में एक ऐसी चाय मिलती है जो कि बन मस्का के साथ खाने में मजा आता है, उसे कहते हैं ईरानी चाय। पुणे में ईरानी चाय के साथ बनबसका जरूर खाइएगा और हैदराबाद में ना तो चार मीनार के सामने चाय अवेलेबल है तो वहां पर कभी जाना हुआ जरूर पीजिए। गुजरात में फेमस है लील चाय और एक होती है तंदूरी चाय जो कि तंदूर के अंदर बनाई जाती है। देन आती है बटर चाय और गोंगुरा चाय, इसी के साथ अश्वगंधा चाय, तुलसी चाय, ये सभी चाय के अलग अलग टाइप्स है जो कि अपने पूरे इंडिया में मिलते हैं और हर एक स्टेट की हर एक जगह की चाय की टेस्ट और चाय की खुशबू अलग होती है और इसका स्वाद भी अलग होता है। तो कभी इन जगहों पर जाना हुआ तो चाय जरूर टेस्ट कीजिएगा और आपकी कौन सी फेवरेट चाय है मुझे जरूर बताइएगा। डीएम कीजिए इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम साथ है तो बात है।
1: हर रोज की तरह बस स्टेशन के पास उस चाय की टपरी पर चाय पीते हुए खड़ा था। आज चाय वाले भैया ने कुछ सोचते हुए मुझसे पूछ ही लिया, भैया एक बात पूछूं। मैंने कहा हाँ पूछिए। चाय वाले ने पूछा, भैया रोज इस वक्त आते हो, एक कप चाय पीते हो, थोड़ी देर किसी का इंतजार करते हो और फिर चले जाते हो, ये पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैया किसी ने जाते जाते कहा था कि 1 महीने के बाद इसी चाय की टपरी पर मिलेंगे, बस दिन नहीं बताया था तो उसी का इंतजार।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं
1: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
2: Attention future researchers and innovators.
3: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. तसेच LLB नंतर करा LLM, Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
2: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
3: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
1: Admission open, MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
2: हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां।
3: ओ मेरी पान सुपारी, अरे रुक जा मेरी जान।
4: अरे देखो, देखो।
5: कादर खान,
3: अरे मैं तो तेरा प्रिय।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 90.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।